0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल विथ बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

6.9 को शानदार डिस्प्ले AI powered कैमरा 3 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम टिफिन टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5684594 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोटोको डाइजेस्टिव र कुकी चाहिँ नाइस
0: अडगुरी।

तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड।

राम राम सन्जे 5 बजे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। लुम्बिनी प्रदेशमा वृहत वृक्षारोपण अभियान शुरू करगेल बा। वन तथा वातावरण मन्त्रालय डिभिजन वन कार्यालय देउखोरी तथा विभिन्न सामुदायिक वनको सहकारीमा अभियानको शुभारम्भ करगेलक हो। प्रदेशभर 25 लाख बिरूवा उत्पादन करगेलको 60 हेक्टर से धिर बढ़ी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण करना लक्ष्य धर्किल बा। सरकारी निजी तथा सार्वजनिक स्थान में बिरूवा लगाजिना जनागिल बा। अभियान का शुभारंभ आईतवार आज लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य से घड़ा गांवपालिका 2 महादेवा स्थित महादेवा सामुदायिक वन में बिरूवा लगाइलक रह कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बिरूवा लगिनाकेल निहोक्न पर्याप्त निहुलक वाकर संरक्षण सक्रुहुन्से महत्वपूर्ण पक्ष हुलक बटुवा राख्ल। वहाँसे हरेक वर्ष लाखौं बिरूवा लगिलसे फिर संरक्षणको अभावको कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुने सकल उल्लेख गर्दै संरक्षण अभियानमा सक्कु नागरिकको साझा जिम्मेवार र लग बटुवा राख्ल। मुख्यमन्त्री आचार्यले वन संरक्षणसँग आय आर्जनको माध्यम फे वनलक उल्लेख गर्दै जड़ीबुटी काठ तथा दाउराका सदुपयोग से स्थानीय समुदाय आत्मनिर्भर बन्ती गैलक बटुवा राख्ल। वन क्षेत्र से प्रदेश सरकार से करीब 1 अर्ब रूपया राजस्व संकलन करलक उल्लेख करते वनवाहन विकास का महत्वपूर्ण आधार को रूप में अगाड़ी भर पर्ना धारणा धै राख्ल। डिविजन वन कार्यालय देउखोरी का प्रमुख गणेश खड़का का अध्यक्षता में सम्पन्न कार्यक्रम में लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मंत्री इन्द्रजीत थारू से प्रकृति का अस्तित्व मानव से फे पुरान हुईलक हंसे वाकर विनाश का मानव सभ्यतामा जो संकट निम्तिना चेतावनी दिएरखल। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले यी वर्षको वृक्षारोपणमा जैविक विविधता हान प्राथमिकता देखिलक जानकारी दिएरखल। लमै नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख लक्ष्मी योगीले वन संरक्षण हान आय आर्जन औ उद्यमसे ज्वारा पर्न आवश्यकता औल्याएरखल। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका अध्यक्ष हरिप्रसाद भूषालले महदेवा सामुदायिक वनको 18 हेक्टर क्षेत्रफलमा 30,000 से बढ़ी बिरूवा लगाइलक जानकारी दिएरखल। उ बिरूवाको संरक्षण गर्न जिम्मेवारी सामुदायिक वन औ उपभोक्ताको जो रलक वहाँ उल्लेख गरिरखल। घोड़ा गांव पालिक का आयोजना में उत्सवमय जून महीना का अवसर में गौरवमय यात्रा ओ सरकार वाला से लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति का सवाल विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हो रहा। कार्यक्रम में बोलते गांव पालिक के उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरी से लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति हुक्रफे समाज का अभिन्न अंग हुईलक हुसे हुकनक का अधिकार सम्मान ओ पहचान का संरक्षण कर सबको पक्ष जिम्मेवार हुई पर्ना बटुआ रखल। उस्ताका इलाका प्रहरी कार्यालय गढ़वाका प्रहरी निरीक्षक साहिल बुढ़ाथो किसे कौनो फे व्यक्ति ऊपर लैंगिक पहचान ओ यौनिक अभिमुखीकरण के आधार में विभेद दुर्व्यवहार व हिंसा हुई निभिना बटुआ रखल। मानव स्वास्थ्य समाज का प्रमुख जुनू चौधरी से सहजीकरण करती लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय का अवस्था अधिकार चुनौती ओ सामुदायिक समावेशीकरण के विषय में प्रस्तुतिकरण करल रहे। वहां से विविधता का सम्मान ओ समान व्यवहार से समतामूलक समाज निर्माण सम्भव हुन बटुवा राख्ले। कार्यक्रममा सहभागी हुनकसे लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति हुनकप्रति सम्मानजनक व्यवहार समान अवसर ओ सुरक्षित वातावरण निर्माण कलाक सरकार वाला निकाय बीच समन्वय ओ सहकार्य आवश्यक रलक धारणा व्यक्त करल रह। गढ़वा गाउँपालिकाका सभा हलमा सम्पन्न कार्यक्रममा गाउँपालिकाका सदस्य चन्द्रा केसी वडा नम्बर 6 वडा सदस्य दिनमणि आचार्य वडा सदस्य क्रम मानव स्वास्थ्य समाज दाङको टिकिला भूषाल लगायतका सहभागिता रहल रह। कार्यक्रमको सहजीकरण गढ़ा गाउँपालिका महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सहायक तर्फको प्रेरणा चन्द शेखरल रहे। दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 15 किलोमीटर सड़क कालो पत्रेको राखल। रक्षा चौर 4 बाटो सोक्से एक्लोयरसम्म 1 किलोमीटर 94 मीटर बासको सोता से वडा नम्बर 14 कार्यालय हुईती मटेरासम्म 559 मीटर ओ राप्ती राजमार्ग से पिली बोटसम्म 2 किलोमीटर 65 मीटर सहित विभिन्न स्थानमा कैकन 15 किलोमीटर सड़क कालो पत्रे करगेल हो। नगर प्रमुख सैनी चौधरी अनुसार चालू आर्थिक वर्षसम्म 9,958 मीटर पक्की नाला वडा नम्बर 3, 7, 19 का वडा कार्यालय भवन निर्माण
भवन निर्माण वड़ा नम्बर 9 में स्वास्थ्य चौकी भवन का तला थप वड़ा नम्बर 9 का मावी दोघरी में 8 कोठे भवन वड़ा नम्बर 5 का प्रावी गैरापातुक 2 क्वाठा भवन निर्माण हो रहल उसका भारतीय राजदूतावास उपमहानगरपालिका का साझेदारी में राप्ती आंखा अस्पताल का अपरेशन थिएटर भवन निर्माण करगिलबा उपप्रमुख चौधरी के अनुसार वड़ा नम्बर 12 18 में कृषि हाट बजार कला पूर्वाधार निर्माण करगिलबा जैकर मध्य वड़ा नम्बर 12 का हाट बजार संचालन में समेत आशा कल्बा उस तह का वड़ा नम्बर 14 का गुठुआ वड़ा नम्बर 4 का खोरिया वड़ा नम्बर 18 का रातामाटा सिंचाई कुलो निर्माण कार्य सम्पन्न हो रहल उस तह का चालू वर्ष में उपमहानगर पालिका सहयोगी पेक्षी सड़क आश्रित मानव मुक्ति पालिका घोषणा करगिलबा रोल्पा में पाछक चार दिन में 4 ठो भरूआ बंदूक फैला परहल विभिन्न स्थान से व्यवहारी से अवस्था में फैला पर्लक भरूआ बंदूक प्रहरी से बरामद करलक हो पाछक समय गत बुधवार रोल्पा सुनील स्मृति गांवपालिका 6 गरगरी स्थित सल्लेरी पाखा सामुदायिक वन में दुठो भरूआ बंदूक फैला पड़ल रह खुको फेद में एक नाल भुईलक दुठो भरूआ बंदूक फैला पड़लक जिला प्रहरी कार्यालय रोल्पा जना राखल उस तह का शुक्रवार माड़ी गांवपालिका एक भितापांग स्थित सड़क के छेव में लुकाकन छिपाई धरलक अवस्था में एक नाले भरूआ बंदूक फैला पाल रह उस तह का शनिवार पुनः रोल्पा नगरपालिका 4 वाईवाई वाई गांव डहरे सामुदायिक वन में एक नाले भरूआ बंदूक व्यवहारी से अवस्था में फैला पर्लक जिला प्रहरी कार्यालय रोल्पा का प्रहरी नायक निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी सुनील थापा नेपाली जानकारी दिल फैला पर्लक बंदूक कानूनी प्रक्रिया मार्फत जिला प्रहरी कार्यालय रोल्पा में आनगिलक जिला प्रहरी कार्यालय रोल्पक प्रहरी नायब उपरीक्षक पंच कुमार बाखु बटवरखल रोल्पामा सशस्त्र युद्ध का समय में राज्य पक्ष व विद्रोही पक्ष बीच हुई भिड़ंत का कारण अखी बंदूक का साथ बम फेट फिटकिल हुईठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसन ज्याप्य थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सेक्ने भाटी अखसक खबर मैसे समाचार कक्ष कसकको संग्रहणसँग मैशालिक राम चौधरी विदाई टू रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ कोई कसैलाई रोग लागे गोखा अस्पताल जाऊ। सर्जन फिजिशियन हार्ट जोड़ने नसा प्रसूति रेडियोलॉजी एनेस्थेसिया बाल रोग थायराइड प्रेशर सुगर छाती मुंडू नाक कान घाटी टाउको गैस्ट्रिक अल्सर फिजियोथेरापी दूरबीन बिलीवर ऑपरेशन।

0: मध्य पश्चिम ट्रान चेक यति बेला बेलुकीको 7 बजेको छ।
1: ओखती साबुनको अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसन्धान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: गुराहीको लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड गुराहीदाङ फोन नम्बर 0825162110। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसञ्चारदेखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोर्नी सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू:
7: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
8: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
9: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
10: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
11: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
12: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
13: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई दाङ। फोन नम्बर 0825362118।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: स्वर्गद्वारी चलचित्र मंदिर घोराईदांग में भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ हिंदी कथानक चलचित्र वेलकम टू द जंगल।
3: हमें जाने तो मालिक, हम तो भांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं।
4: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है।
5: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो?
6: तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ज।